0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनाइबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: गुड न्युज एफएम 105.1।
1: अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम सफल यात्रा प्रस्तुत तेज रोकाको साथमा।

0: गुड न्यूज एफएम 105.1।
1: अब प्रस्तुत हुँदैछ कार्यक्रम स्पार्क माइ फेथ।
2: आज ही नेनाजी गुदु वापत्ति कया आत्मिकी रेडियो ज्याजो स्पार्क माइ फेथ जुगु विश्वास के चमक हया बिउ। जयमसी जोजलपा जी अमृता महर्जन कार्यक्रम स्पार्क माइ फेथ के छिसकसित न लसकु छ। थौया बचनिया शीर्षक दु जिगु पाप्या नीति यशु पुलाबी ज्याङगुमु जिगु विश्वास के चमक हया बिउ भाग छ। हिब्रू पिङ्गु अध्याय झिङ्यागु के धयातगुदो कि छिमसा व जी जीवन अनुभव यानुगु फुक्क कथ जाँचे यशु कृष्ण लाना चुङगुदो थौ चिस यशु वैकया पृथ्वी या सेवकिया इले फेमागु दक्ले त धङ्गु चुनौती या त बालक स्वेगु जुई वैकया त घृणा याइपी मनुदे पुछल तस्क दागु ख अले वैकया त क्रुसे यो खाना भयानकको पीडादायक मृत्यु भोगे यागु नीति यङ्कल मर्कुस जिनपेङ्गु अध्याय यो श्री निगु श्री सोकु पत्के धातगुदो वेकपी गेत्समणि ठेने ढुङ्गा यशु इन्थ धारिल जी प्रार्थना याना चोतले छिपी थनेहे चुनाचो वेकल पत्रुस याको पो युहन्ना या त जक्क बनाइङ्का दिल उब्ले वेकल तस्क हे नुग मछिङ्गा दिगु जुया दिल यशु या नुग झातुल अले तस्क ज्ञात छादासा पुलाको नियमया भविष्यवाणी वेकल यक्कु दुख सिमाली तका शिवगुख वेक मनुख शिवजी थे थुकी वया त न ज्ञान पुसे चुन मर्कुस चिनपेङ्गु अध्याय श्री पेङ्गु पत्के धाया तगुदु वेकल इम त धाया दिल नुग हिसे चुना जुगु छाती हे तज्याई थे चुना चुन छिपी मध्ये थन हे चुनाचो वेकल यातना व सजाए फे चाहे मजु अले वयागु नीति भविष्यवाणी याइगु दक्ले पीडादायक मृत्यु शिवगुने वया त छुहे रुचि मधु वयागु जीवन या थगु थाकुगु इले यशु वया दक्ले सत्य पी दक्ले विश्वास याए बह पी अनुयायी तेके कुहाली फुनाचुन व इम त सक्रिय सतर्क प्रार्थना याना थगु अवस्था बालक ध्यान बित इना पाया त मर्कुस झिनपेङ्गु अध्याय यागु सुइखुकु पत्के धा तगुदो भचा उखे झाया बे कोप्सा पुया वैकल थथे तका प्रार्थना याना दिल अब्बा बा छी याए मफुगु छुन्न मधु थो दुख यागु खोला जी थास छिका दिस ए न जी त यो थे याना दि मते छि त यो थे हे याना दिस वया अबु व परमेश्वर वया त छु याए त धागु ख याना यशु या त तस्क चिउता दो व अथे याईगु पाखे भनेगु नीति वैद लम्पु या नीति इनापा याना छुङ्गु दो थो तीव्र प्रार्थना लिपा यशु वया चेला ते त दिल अब्बा बा छि याए मफुगु छुन्न मधु थो दुख यागु खोला जी थास छिका दिस ए न जी त यो थे याना दि मते छि त यो थे हे याना दिसौ